हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो, बुधंदा।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू सुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अपना घर और आवाज
1: GFM 91
2: It's 10 AM.
3: अल हबीब करंट बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
4: अब आप
5: आया इन लोग अमरीकी फौज चौड़ाया तो कमर्शियल जहाज थे हमले ईरान को जल दी आपने हर बस में गुजरंदड़ अमरीका जो कमर्शियल बनाए हो ईरानी ड्रोन इस मुंडे अमरीकी नैब याद आमन तो सीधो राबतो करे सके तो पाजरान इनकलाब पारा अमरीका हमलो नाकाम बनाने की दावा पाजरान इनकलाब जो चवण है तो अमरीका जो सख्त जज्बी से कल हमलो नाकाम बनाए छो है जवाब में अमरीकी फौज चढ़ाए व्यवहार अमरीकी सदर ट्रंप वायदे की भंकड़ी सख्त जुमलन की हमलन की डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हुरमस माला कया एक ड्रोन एक मथे हिस्से से टकराए पो टे ड्रोन किराए तबाह किया वह अड़ो अमल जंगबंदी मुहिदे की भंकड़ी ए बेवकूफी है असा वट दुनिया की ताकतवर फौज है असा ईरानी क्यादत खत्म कर छी जनरल सुलेमानी के ब मारे छो ईरान जो फिजाई ए सामूरी दिफा भी खत्म कर छो है बीटू जहाजन ईरान जज्ब खत्म कर छी ईरान के हथियार ठहण न डींदी अमरीका अमन अमरीकी पहरी अमन मुहिदे के फ्रेमवर्क के बुनियाद से अगत वधाईंदी इन फ्रेमवर्क जहा मस्बत नतीजा निकरंदा लबनान अमन मुहिदे लिए असा भी घणो लबनान की खुदमुख्तियारी के वाजे करे तो हिजबुल्लाह खान का पाक करण और उन बुनियादी ढांचे के खत्म करण लाइ तरीकेकार फराहम कहिदे तहत इसराइल इन खतरन के खात्मे बाद पंज वही

ईरान जे पहिरीं नाकाबंदी दौरान अमरीकी फ़ौज पारां तेवील में वरितल 22 ईरानी मुहान पाकिस्तान पहुची विया। नायब वज़ीर आज़म इसाकदार तस्दीक कंदे चयो आहे त 22 ईरानी मुहाड़ा कराची पहुतल आहिनि। संदनि वापसी लाइ ईरानी अख़तियारनि सां राब्ते में आहियूं। मुहाननि जी बाहिफ़ाज़त वापसी लाइ अमरीका ईरान सां लाॻीतो राब्ते में हुआसीं। हीउ अमरीकी तेवील मां वापसि करायल ईरानी मुहाननि जो चोथों ग्रुप अमरीका ईरान जी

0: हड्डियां जो शो अब
1: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
2: वादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
1: GAFM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे रखी करो नहीं।

0: सिंध के FM 88 नेटवर्क, जी FM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी।
2: ये जो असल राज विटामिन ई बीड्स एंड जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी एंड चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म एंड दिए कुदरती असली ग्लो दी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: हर गोई
1: नट
0: GFM88 नट सिंध की आवाज 11:30 This time check to you by
2: Heme Diamond JKD Card Saaf Naram Ai Roshan Chehro Hand Glue
3: Aapki Khoobsurat
4: White

0: प्लान
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सुन जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सुन जो आवाज बुधंदा रहो।

0: सिंध की आवाज।
1: GFM नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: Express PM
3: दिस प्लस अकाउंट भरोसा भी बैंक अलग।
4: GFM

लबनान इसराइल ऐं अमरीका अमन मुआदे जे फ्रेमवर्क ते सहियूं करे छॾियूं। अमरीकी परडे॒ही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त टधुरी अमन मुआदे जे फ्रेमवर्क जी बुनियाद ते अॻिते वधाईंदासीं। फ्रेमवर्क जा मस्बत नतीजा निकरंदा। लबनान ते अमन मुआदे लाइ असांखे अञा घणो कुझु करणो आहे।

सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां चइनि ॼणनि जा लाश त हिकु सुञाणप न थी। दादू में खुदाबाद लग मरियुनि जे ॻोठ मां नौजवान जो घर आॾो गोली लॻल लाश अथ। नौजवान जी सुञाणप पीर बख़्श वल दमीर बख़्श मरी तौर थी। टुल मां गुम ॼणियल नौजवान मिठल बुरलो जो बि वाह मां लाश मिलियो। नौजवान गुज़िरियल ॾींहुं घरां निकिरण बाद गुम थी वियो हो। रतो दिरो जे पीटीसी आयल आफ़िस भरसम होटल ते पोरियो कंदड़ नौजवान जो लाश हथायो। पुलिस मूजिबि फोतीअ जी सुञाणप बशीर वल अरबाब भुट्टो तौर थी आहे। बाईपास भरसा होटल ते कमु कंदो हो। सन भरसा वंडे सावे त नामालूम शख़्स जो लाश कपड़नि खां आजो मिलियो। पुलिस पहुची लाश खे पंहिंजे टेबिल में वठी माजन ताल खे अस्पताल मुंतकिल कयो।

बुलडी चाकरी में कत्ल थी वेल पीपी अगवान संस घरवारी जनादन आवाज अदा करण बाद अदफीन पीपी अगवान गुलाम नबी मंगसी ऐं संस घरवारी समरीन खे गुज़िरियल रात हथियारबंदनि

0: कार ते फायरिंग करे कतल कयो हो। पतला जो इलाज जारी।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।

0: हक सच गीत संगीत जो आवाज जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज जो
1: It's 1 PM. This time check is
2: रिश्ता भरोसे का
3: अब GAFM नेटवर्क पर
4: निशानों बणाइण जी दावा अमरीकी सेंटकॉम मूजिब ईरान जाल स्टोरेज साली रेडार्स के निशानो बणायो वियो अमरीकी कार्रवाई ईरानी ड्रोन हमले जो ताकतवर जवाब हो ईरानी पासदार इनकलाब या अमरीका अमरीकी हमला नाकाम बणाइण जी दावा पासदार इनकलाब चयो आहे त ईरानी बहरिया ऐं फिज़ाया सेरक शहर ते अमरीकी हमले खे नाकाम बणायो आहे जवाब में ईरानी फौजी खिते में मौजूद अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो आहे अमरीकी नायब जंग बंद ईरान खे इज़त ॾिनी आहे ईरान खे मफ़ामती मुआदे ते ख़िलाफ़ तव्हां सिधी रीत ॿुधाए सघनि था तशद जो मुक़ाबिलो तशद ज़रिए ई करियो वेंदो नायब ॻाल्हि जो ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची सां कोन थे राब्तो अब्बास इराक़ची पारां मुहाणनि जे वापर खण ॿिन्ही परॾेही वज़ीरनि पारां अमन थी ॾियण वारे अज़म जो वर्चाओ परॾेही ऑफिस मौजूदु इसाकदार परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची खे चयो त खिते में पाएदार अमन लाइ इस्लामाबाद अमन अमल खे वधाइण में तामीरी किरदार अदा कंदो रहंदो अब्बास इराक़ची अमन कोशिशनि ऐं भारत जा थोरा मञा लबनान इसराइल ऐं अमरीका अमन मुआदे यूं करे छॾियूं अमरीकी प्रोबियो चयो आहे त टे दुरी अमन मुआदे जे फ्रेमवर्क जे बुनियाद ते अॻिते फ्रेमवर्क जा मसबत नतीजा निकिरंदा लबनान अमन मुआदे लाइ असांखे अञा घणो कुझु करणो आहे बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ॿिनि हंधनि ते ऑपरेशन 8 दहशतगर्द मारिजी विया SPR मूजिब खारान ऐं मस्तूंग में 26 जून ते ऑपरेशन कयो वियो खारान में ऑपरेशन दौरान 3 दहशतगर्द ऐं मस्तूंग में 5 भारतीय हामी दहशतगारनि ते सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां 5 ॼणनि जा लाश हथ ॿिनि जी सुञाणप न थी दादू वेझो मेरनि जे ॻोठ मां नौजवान जो घर आॾो गोली लॻल लाश मिलियो नौजवान जी सुञाणप पीरबख़्श वल्द अमीरबख़्श मरी तौर थी ठुल मां गुम मिठल बुढो जो मिलियो नौजवान गुज़िरियल ॾींहुं घरां निकिरण बाद गुम थी वियो हो रतु देरो भरिसां होटल ते पोरियो कंदड़ नौजवान जो लाश हथ पुलिस पहुची पहुती पोइ हथ बशीर भुट्टो होटल ते कमु कंदो सन भरिसां ॿ नामालूम खां सुञाणप न थी सिंध जे मुख़्तलिफ़ शाखनि ऐं भावनि में पाणी शदीद खोड़ बरक़रार आबादगार सरापा चार जमाल चार जमीर रोकण शाख जे आबादगारनि जो पाणी खोट ख़िलाफ़ कोडरूं खणी एहतजाज खोरवा जे चोरवा शाख जे आबादगारनि जो पाणी खोट ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो झोल जे शाहूआ जे पुतली जे आबादगारनि जो पाणी खोट ख़िलाफ़ सांगल रोड ते धरणो अठहठ मोरी भरिसां जाम लगारी शाख जे पुतली में पाणी जे खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो एहतजाज सन ऐं मांझर में बि पाणी खोट ख़तम न थी आबादगारनि जो एहतजाज घरेलू भरिसां जवाबदार मुड़ुस डंडा हणी ज़ाल ऐं जेद में सजाद कासकली ज़ाल शुमैला खे डंडा हणी क़तल कयो पुलियो कारण मालूम न थियो आहे वधीक जांच करियूं पिया बुरड़ी शाह करीम में कत जी जनाज़े नमाज़ घर वारी समरीन जेको फायरिंग में वकीलनि चवण आहे त कोर ॼाणाए केस दाख़िल कयो वियो आहे नुसर फिरोज़ सिविल अस्पताल में दवाउनि जे खोट ख़िलाफ़ मरीज़नि ऐं शहरनि जो एहतियात मुज़ाहिरनि जो चवण आहे त किरोड़ रुपियनि जे बजट बावजूदि अस्पताल में दवाऊं नायाब हुजण करे मरीज़नि सां स्टोर कीपर बदतमी
3: तयारी
5: की है FM 96

0: to you by
1: White Dream Glowing Eucon International.
2: हक सच जो आवाज़ हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो.

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई
2: पिता जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खत्ते की बनी है आवाज।
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।
4: बेटा निखरा निखरा चेहरा व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले, चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।

0: अपना शहर अपना घर और मजबूत
1: GF1.6।
2: मेहरान जान GAFM नेटवर्क सिंध की आवाज।

ओह जी क्या बात है। इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद ही प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन जी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते हुए होते जा रहे हैं और खूब 03105 और डायल करने की आइए कि आप प्रोडक्ट्स नहीं हुए तो आप लोग सुन रहे थे कुछ खो दें जिनका पानी पीना और कुछ

ओके जी अब्दुल खालिक अबोल कहे थी भाजी असा वट क्रीम न पो मिले हाँ कजे भा तुम किथा असा के बुधो पाया यो बुधाजो इन का अलावा ही जो हाँ मैं नंबर बुधाई इन नंबर से एक दफो राबो जरूर कजो जी तवाज सिटी में तोठ में तवे एरिया में ही प्रोडक्ट अवेलेबल थी वन प्रोडक्ट आन वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट नंबर तुम डायल कदा 03-15-799-0595 03-15-799-0595 ही नंबर है जैसे तुम राबो करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सको आराम से।

पाकिस्तान असांजो पाड़े सहारो वठी रहियो आहे। पाक फ़ौज दहशतगर्दीअ जे ख़ात्मे लाइ पुरज़म आहे। कराचीअ में पाक बहरिया जे पास स्काउट ब्रिगेड खे ख़िताब कंदे वज़ीर शरीफ़ चयो त पाकिस्तान जी कोशिशुनि सां अमरीका ऐं ईरान में इस्लामाबाद मफ़ामत ते खिते में अमन आणी सदर मसूद पज़ीशान पारां पाकिस्तान जो दौरो इस्लामाबाद जे अहम किरदार तब्दीलनि जो बि असरु पाकिस्तान दुनिया में अमरीका ऐं ईरान जो हिकु ॿिए जी दिफ़ाई मागनि जी दावा आम मूजिबि अमरीका ईरान जो ड्रोन ऐं मिज़ाइल स्टोरेज ऐं साली रिडार्स खे निशानो बणायो वियो। अमरीकी हमदानी बेरिया ऐं फिज़ाया सिरक शहर ते अमरीकी हमले खे नाकाम बणायो वियो। जवाब में ईरानी फ़ौज खिते में घेरनि खे

0: ईरान अमरीकी मिज़ाइल हमलन के मुआहदे की भंकड़ी करार दई छो। ईरानी वरदई वजारत है त अमरीकी मिज़ाइल हमला मफामती यादाश्त के संगीन भंकड़ी आन। ईरानी फौज अमरीकी हमलन के जवाब में अमरीका से लागपल हदफन के निशानो बनाया विचो पर मुल्क अमरीका खिलाफ इन सरजमीन इस्तेमाल थे न दिन। नायब वजीर आजम इसहाक डार तो ईरानी वरदई वजीर अब्बास इराकी से फोन से राबत अब्बास इराकी वापसी से पाकिस्तान की वाखाण बिन पारा अमुन के अथी दियण वाले आजम जो वजाओ परी आफिस मौजूद इसहाक डार परी वजीर अब्बास इराकी के खिते में पायदार अमुन लाए इस्लामाबाद अमन अमल के वधाने में तामीरी किरदार अदा कंदो रहंदो। अब्बास इराकी अमन कोशिश ने पाकिस्तान के सहकार जा थोरा मना। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज जो बिन हंधन के ऑपरेशन अठ दहशतगर्द मारजी पाया। आईएसपीआर मौजूद खारान ए मसूम में 25-26 जून से ऑपरेशन किया वो। खारान में ऑपरेशन दौरान 6 दहशतगर्द ए मसूम में 5 भारतीय हामी दहशतगर्द मारजी पाया। मारजी पियल दहशतगर्द शहर ने कानून लागू करने इदारन से हमले में सिंध के मुख्तलिफ शहर में 5 जणन जा लाश हथ बिनी सुणप नी दादू वेझो मरीन के गोठ में नौजवान जो घर आदो गोली लगल लाश मिलो। नौजवान सुणप पीरबख्श वालिद अमीर बख्श मरी तौर थी ठुलमा गुम जणप नौजवान की पे हो रत देर पूरे लाश हथ पुलिस मालूम थे सुणप न थी।
1: सुन रहे थे FM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: हो तो आवाज की है 91.6।

बढ़ाते रहेंगे और साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप परचेज करते हैं तो आप लोग ये ढांचे को फोटो आना माइज वो भी डॉक्टर डॉक्टर्स आना पूछा करे फुल तहकीक करे कोई ही प्रोडक्ट तैयार जो नालो है डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका माइक्रोबीट फार्मुलेशन से तैयार थियल है वाइटमिन ई मौजूद है तवाजी स्किन के निखारी गोरो बनाई तवाजे चेहरे जा जेके खत्म करे अगर मुरझायल रही है तमाम वक्त का पे कुराड़ा थी वया हो तो ये सब चीजों खत्म थी तवाजी स्किन ग्लो कर शुरू तवाजी स्किन ते निखार अचन शुरू थी वेंदो जदे तवा इस्तेमाल कंदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम ओके जी सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम से अगर तवा के डी स्किन फेस वॉश भी मिली रो है डी स्किन फेस वॉश जो इजीली तवा इस्तेमाल कर सको ऑल स्किन टाइप के लिए है डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी ऑल स्किन टाइप के लिए है सो डी स्किन फेस वॉश जो हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार थियल है उनको मकसद ये होंगे अगर तवाजी स्किन जो डिहाइड्रेट थी वही है तवाजी स्किन सफाई रुखी सुखी लगनी है तो तवाजी स्किन के हाई तवाजी स्किन के ग्लो दींदो इन सफाई वीआईपी बनाए छी तो अगर तुम मर्द हजात आयो खवातीन आयो जी भी मानो असा बुधन पाया टीनेजर्स आयो खास की तवाजे इस तैयार कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवाजे टाइम इस्तेमाल कयो अगर तवा डी स्किन फेस इस्तेमाल करन चाहो था तो बाकायदा तवा इस्तेमाल करी सको था डी में 3-4 दफा तवा इजीली इस्तेमाल करी सको था डी में 3-4 दफा तवा लगायो उनखा पोई जको ना डे मिली वेंदो कोई तवा दबावा छा गाल कजे फेस त ई उही प्रोडक्ट आहे जें जे बारे में ना मा ता के बुधाईया जदी तवा इस्तेमाल कर रेजी वेदी ई प्रोडक्ट जकी आहे ओ केतरा जबरदस्त आहे ने प्रोडक्ट जे इस्तेमाल सा तवा के केतरो सठो रिजल्ट मिली सके ना राजे टाइम ते इस्तेमाल करन खा पेरा फेस वॉश अक्सर जो मानो ई बस कहन यो सफा न करना पोई तवा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवा कयो था तवा के बिन रातिन जे शुरू थी वेंदो सो क्रीम हुजे या डी हुजे बई चीजों तवा इस्तेमाल करी दिसो तवा के जबरदस्त रिजल्ट मिली वेंदा आई नथा मले अगर तवा जे एरिया में अब तवा डायल कयो 03-15-799-0595 ही कांटेक्ट नंबर आए जे तवा राबतो करे पांजे करीबी जनरल स्टोर्स ते ही तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए सको था ओके जी सो ही तवा सा गड उही गालियां आए जे के जरूरी हुंदी तवा के बुधाएं जी तवा के खबर पई त बाबा वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजन या डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजन इन जो इस्तेमाल तवा जे खूबसूरती जला केडो जरूरी आहे सवाल अज मां खां पूछ तवा मुखे बुधायो था तमाम खूबसूरत तमाम जरूरी सवाल मां खां पछो आहे तवा मुखे जॉइन कयो पया 881 ते फेसबुक ते जे मानु फेसबुक ते मुखे बुधन पया फेसबुक ते तमाम मौजूद आहे तो तमाम पोस्ट के लाइक शेयर कंदा हलो पांजे दोस्तन के मेंशन कंदा कयो जे उनन के भी खबर पवे त मार्केट में केड़ा प्रोडक्ट हलन पया आई उनन के भी सन बाबा हर केंजी या बेसिक नीड हुंदी आहे त तवाजी जेका खूबसूरती आहे न उहा हमेशा वधंदी रहे ऐं अगरि तव्हांजी उमिरि थोरी वधंदी वेंदी आहे न उमिरि सां जीअं जीअं उमिरि तव्हांजी वधंदी वेंदी त तीअं तव्हांजी स्किन खे प्रोडक्ट ज़रूरी हूंदा आहिनि प्रोडक्ट तव्हां अगरि तव्हांजी स्किन ते रिंकल अचण शुरू थी विया आहिनि त तव्हांखे ज़रूरत आहे त तव्हांजी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो जे तव्हांजे चहिरे जा जेके रिंकल आहिनि उहे ख़तम थी वञनि ऐं तव्हांजी खूबसूरती में जेको आहे न इज़ाफ़ो अची वञे सो लाज़मी ट्राए करे ॾिसजो अगरि तव्हां इस्तेमाल कयो पिया त मूंखे ॿुधाईंदा हलो

फैक्ट्स आहिनि जेके असां शाम जे प्रोग्राम कंदा हलंदासीं, इहे ॾिसूं था हिते पैनल ते मैसेज आहिनि। और हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर विलेज गुलाम कासिम सोलंगी फ्राम है गोरजा से, दिलावर हुसैन सोलंगी बाजी सिद्राम केसी। योर टॉपिक एंसर, अहले बैत की मोहब्बत हर मुसलमान, क्योंकि यही मोहब्बत कब्र में और कयामत के दिन शिफाहत का जरिया होगी। ओके जी, ड्राइवर नजीर सोलंगी हमारे साथ, जमादार खुदा बख्श सोलंगी, मुदस्सिर सोलंगी, आसिफ एंड मुबशिर सोलंगी हमारे साथ हैं। तमाम भाइयों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और अरीबा हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम अरीबा, कहती आप ही छाला, आप ही सफर ठीक है, तमाम बताया कि आयो अरीबा। और हां जी बिल्कुल।

ओके जी, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क. हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातिली सकरण और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी इस्तेमाल कीजिए. इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए. उसके लिए डायल करते जाइए 03-15-799-0595. इन नंबर से तुम रातों कर रबे करने का फौरन बाद तुम उन्होंने के दस्यो तो बाबा तुम पाँच करीबी जनरल स्टोर से पाने गोठ में पाने सिटी में पाँच एरिया में अवेलेबल कराने चाहो था व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स या वरी जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स तुम अवेलेबल करायो. अवेलेबल कराने का पोई तुम परचेज कयो. परचेज करने का पोई तुम इस्तेमाल कयो. सो इस्तेमाल करते जाइए, खूबसूरती को बढ़ाते जा रहे, हमेशा खूबसूरत रहिए क्योंकि आपकी खूबसूरत व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. इसी के साथ साथ जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद हैं, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, अपने होने का एहसास दिलाते जाइए और जरा मुझे ये बताइए कि आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं. साथ ही साथ आगे हमें अंदाजा हो कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते जा रहे हैं. ओके, इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में. सो डी बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों की खूबसूरती मुताबिक तैयार की गई है. डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक व्हाइटनिंग नाइट क्रीम है जो कि सिर्फ दो दिनों में नतीजे. डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोग जब इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को पता चलता है जबरदस्त क्वालिटी गई है की गई खाने के लिए और साथ साथ जब आप इस्तेमाल करते रहे चमकदार बनाने के लिए आपके चेहरे पर डार्क सपोर्ट चेहरे पर जो है इतना खूबसूरत सा निखार आना स्टार्ट हो जाता है कि आप खुद ही कहते हैं कि हम पहले क्यों नहीं लगा रहे थे डी स्किन ब्यूटी क्रीम. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, चेहरे को चमकदार बनाती है और आपके चेहरे की स्किन जो है वो ऐसा होता है कि भाई ऐसा महसूस होता है कि भाई अंदर से कोई चीज आपकी स्किन पे गई है और अंदर से आपकी खूबसूरती जो ना वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, विटामिन ई बीट्स इसके अंदर मौजूद है, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन से तैयार की गई है. तो आप लाजमी ट्राई करके देखिए ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करिए तो साथ में आपके लिए डी स्किन फेस वॉश और डी स्किन फेस वॉश भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हाइलुरोनिक एसिड सीरम से तैयार की. लाजमी आप ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. लड़के लड़कियां सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल स्किन टाइप के लिए है, हर स्किन टोन के ऊपर आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं. सिर्फ दो रातें आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे. तो ट्राई करके देखिए, खूबसूरती अब आप इजीली हासिल कर सकते हैं जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करेंगे. तो इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरती को बढ़ाते रहिए और हमेशा खूबसूरत होती रहिए. और इसी के साथ साथ यहाँ पर सनम मारवी की आवाज में एक बहुत प्यारा कलाम इन्हें लिस्ट में लगाया है, तो इस कलाम को साथ साथ सुनेंगे. आप क्या कह रहे हैं, आपके फीडबैक्स की जाने भी आते हैं. आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरतियां हासिल करते रहिए.

0: नौशेरो
1: नौशेरो
2: शहर अपना घर
3: It's 3 p.m. This line check is brought to you by
4: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडा सां पेश कयो वियो
5: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर
6: पाकिस्तान इनकलाब चयो आहे त ईरानी बेरिया ऐं फिज़ायत सिरक शहर ते अमरीकी हमले खे नाकाम बणायो आहे जवाब में ईरानी फ़ौजी खिते में मौजूद अमरीकेरनि खे बि निशानो बणायो वियो आहे अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस पारां तशदुद जो जवाब तशदुद ज़रिए ॾियण जी धमकी जेडी वेंस चयो आहे त जंगबंदी मुआदे ते ईरान खे सहयोग करण बाद इज़त ॾिनी आहे कि मुआदे ते इख़्तिलाफ़ आहिनि त सिधी रीति ॿुधाए सघनि था ईरान अमरीकी अमलनि खे मुआदे जी भञकड़ी करार ॾेई छॾियो ईरानी परॾेही वज़ारत चयो आहे त विच ओभर जा मुल्क अमरीका ख़िलाफ़ पंहिंजी सरज़मीन इस्तेमाल थियण न ॾिन इब्राहिम अज़ीज़ी चयो त अमरीकी सदर साबित कयो त हू असूलनि तोड़े मुआदे जो एतराम नथो करे पाकिस्तान पंहिंजी सरज़मीन तां हर क़ीमत ते दहशतगर्दी खे ख़तम कंदो असांजो पाड़ेसरी शिकस्त बाद प्रॉक्सीज़ जो सहारो वठी रहियो आहे पाक फ़ौज दहशतगर्दीअ जे ख़ात्मे लाइ पुरज़म आहे कराची में पाक बेरिया जी पासिंग आउट परेड खे ख़तम शहबाज शरीफ चयो आहे त पाकिस्तान जी कोशिशुनि सां अमरीका ऐं ईरान में इस्लामाबाद मफ़ामत ते सयूं थियूं खिते में अमन जे क़याम लाइ माशल आसम जूं सहयोगियूं हुयूं ईरानी सदर मसूद पख़्शान पारां पाकिस्तान जो दौरो इस्लामाबाद जे अहम किरदार जो एतिराफ़ हो खिते में थींदड़ वॾनि तब्दीलनि जो असर बि जल्द ज़ाहिर थींदा पाकिस्तान दुनिया में अमन जो अलमबरदार तौर उभरियो आहे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राख़्ची सां फोन ते राब्तो अब्बास राख़्ची पारां मुहाणनि जी वापसी ते पाकिस्तान जी वाखाण ॿिन्ही परॾेही वज़ीरनि पारां अमुन खे हथी ॾियण वारे अज़म जो वर्जाओ परॾेही ऑफिस मौजिब इसहाक़ डार परॾेही वज़ीर अब्बास राख़्ची खे चयो त खिते में पायदार अमुन लाइ इस्लामाबाद अमुन अमल खे वधाइण में तामीरी किरदार अदा कंदो रहंदो अब्बास राख़्ची अमुन कोशिशुनि ऐं पाकिस्तान जे सहकार जिते बि थोरा मञा बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ॿिनि हंधनि ते ऑपरेशन 8 दहशतगर्द मारिजी विया एसपीआर मूजिब खारान ऐं मसनू में 25 ऐं 26 जून ते ऑपरेशन कयो वियो खारान में ऑपरेशन दौरान 3 दहशतगर्द ऐं मसनू में 5 भारतीय हामी दहशतगर्द मारिजी विया मारिजी वियल दहशतगर्द शनून लागू कंदड़ इदारनि ते हमलनि में मुलवस हुआ सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां 5 ॼणनि जा लाश हथ ॿिनि सुञाणप न थी दादू वेझो मरीन जे ॻोठ मां नौजवान जो घर आॾो गोली लॻल लाश मिलियो नौजवान सुञाणप पीर बख़्श वल्द अमीर बख़्श मरी तौर थी ठुल मां गुम ॼाणियल नौजवान मिथल बुलड़ो जो पल वाह मां लाश मिलियो नौजवान गुज़िरियल ॾींहं घरां निकिरण बाद गुम थी वियो हो रतो देरो भर सां होटल ते फोरियो कंदड़ नौजवान जो लाश हथ पुलिस मौजिब फौती पोरत बशीर भुटो होटल ते कमु कंदो हो सन भर सां इंडस हाईवे तां नामालूम शख़्स जो कपड़नि खां आजो लाश हथ सुञाणप न थी नुसर फिरोज़ भर सां बि क़ौमी शाहराह तां पीरसन जो लाश हथ सुञाणप न थी
7: मुसलसल 2 महीना थिया आहिनि त उन्हनि जी पुछड़नि ताईं पाणी पीअण जे लाइ न आहे पकी पकड़ माण्हू ईअं मरंदा असांखे 3 महीननि खां वठी पाणी न आहे मिलियो
6: सिंध जे मुख़्तलिफ़ शाखनि ऐं वाहन में पाणी जी शदीद खोड़ बरक़रार आबादगार सरापा एहतजाज जमाल शाह जे मीर रुकण शाख जे आबादगारनि जो पाणी खोट ख़िलाफ़ कोडरूं खणी एहतजाज कयो खोरवा जे चोरवा शाख जे आबादगारनि जो पाणी खोट ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो झोल जे शाहूवा जे पुथरी जे आबादगारनि जो पाणी खोट ख़िलाफ़ सांगल रोड ते धरणो 8-8 मोरी भरिसां जाम लगारी शाख जे पुथरी में पाणी जे खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि एहतजाज कयो सन ऐं मांझंदि में पाणी खोट ख़तम न थी आबादगारनि जो एहतजाज कराची जी अदालत में बीआरटी करप्शन केस जी ॿुधणी जवाबदार ज़मीर अब्बासी वधीक 6 ॾींहनि जे जिस्मानी रिमांड ते एंटी करप्शन हवाले ॿुधणी दौरान अदालत जांच आफ़ीसर खां सवाल कयो जवाबदार जो बयान खे रिकॉर्ड जो हिसो बणायो
8: फ्रेशनेस का अहसास पूरा दिन और किसी परफ्यूम की ज़रूरत नहीं महको हर पल विद ब्लैक
5: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़

0: मेरा
1: फैन। White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। White H Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। White H Beauty Cream, ग्लोइंग स्किन का राज। कौन इंटरनेशनल
2: DAFM 88 नेटवर्क जिंदगी।

मुझको छोटा न समझ, मुझको छोटा न समझ, बात यही कहता हूँ। मैं भी अकबर की तरह अज़्म-ए-जवां रखता हूँ।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से
1: रंगली के टुकड़ों से जुड़ी
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

खुपन राज सिर्फ डी स्ट्रीम इसमें और जदीद माइक्रोबीट निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये है FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: अब आप सुनेंगे जीए FM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: अली पासे का आउटब्रेक के खिताब करते वजीर आजम शहबाज शरीफ चयो तो पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका ईरान में इस्लामाबाद मुफाहमत ते सहयूं थियं। खिते में अमन के क्याम के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों भी सारा जोग्य हैं। ईरानी सदर मसूद पेजिशियान पारा पाकिस्तान के दौरों इस्लामाबाद के अहम किरदार जो एतराफ़ हो। खिते में थन्द वन तब्दीलियों असर भी जल्द जाहिर। पाकिस्तान दुनिया में अमन जो अलमबरदार तौर उभरियो है।

बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्स जो बिन हंधनि ते ऑपरेशन अठ दहशतगर्द बाजी विया। आईएसपीआर मुजिब खारान ऐं मस्तोंग में 25 ऐं 26 जून ते ऑपरेशन कयो वियो। खारान में ऑपरेशन दौरान 3 दहशतगर्द ऐं मस्तोंग में 5 भारतीय हामी दहशतगर्द बाजी विया। बाजी वियल दहशतगर्द शहरनि ऐं कानून लागू कंदड़ इदारनि ते हमलनि में मुलविस हुआ।

सिंधी असेंबली में बजट ते बहस दौरान सूबा वज़ीर ऐं हुकूमती एमपीएफ जी एमकेएम वफ़ाक़ी हुकूमत ते तनक़ीद। सूबा वज़ीर सैयद नासिर शाह चयो त समूरी दुनिया में मोटरवे पोर्ट सिटी खां शुरू थींदा आहिनि। हैदराबाद कराची सखर हैदराबाद मोटरवे सिंध न पर समूरे मुल्क जी ज़रूरत आहे। एमकेएम जे तलहा अहमद चयो त सूबनि जी ॻाल्हि त मुल्की आइन में शामिल आहे, नए सूबे जी ॻाल्हि खे गदारी चवण मुनासिब न आहे। एमपीए जमीर सुमरो एमकेएम ते जवाबी वार कंदे चयो त सिंध बम्बई बेकरी जो केक न आहे जो तव्हांखे कराची कटे धार करे ॾियूं।

0: चल चल बमिना चाल कर उन्हें भी कुछ दिन पहले पानी पीने भी लाना है बाकी पकड़ मारो उन्हें मरना
1: आजे बिन में न जावती पानी ना है मिलो
2: सिंध के मुख्तलिफ शाख निवाहन में पानी की शदीद खोट बरकरार आबादगार सरापा एहतजाज जबाशाह आजीवी रुकन शाख के आबादगार पानी की खोट खिलाफ कोरड़ू खड़ी एहतजाज खोरवा के चोरवा शाख के आबादगार पानी की खोट खिलाफ मुजाहरों झोल के शाहुआ आजी पुछड़ी के आबादगार पानी की खोट खिलाफ सांगर रोड से धरणो अठहठ मोरी फसा जाम बिगारी शाख के पुछड़ी में पानी की खोट खिलाफ आबादगार एहतजाज सन ए माझन में भी पानी की खोट खत्म न थी आबादगार एहतजाज कराची की अदालत में बीआरटी येलो लाइन करप्शन केस में गिरफ्तार जवाबदार जमीर अब्बासी के जिस्मानी रिमांड में चयन ढीन की वाध बुधने दौरान अदालत जांच अफसर का सवाल कर जवाबदार के बयान के रिकॉर्ड हिस्सों बनाया वो है या न जांच अफसर बुधा तो जवाबदार जमीर अब्बासी के बयान के रिकॉर्ड हिस्सों बनाया वो है बुधने दौरान जवाबदार जमीर अब्बासी अदालत के बुधा तो खबर नो संदस फैमिली जै बैंक अकाउंट से बया तफसील तलब कया पा मनसूबे जो कंसल्टेंट डेप्यूटी सेक्रेटरी जो भाव है रोक रकम खड़ी भजी वो आया एंटी करप्शन जो जोर रुगो हथकड़ी लगाने से है अदालत केस की बुधनी 1 जुलाई तक मुलतवी कर छी।

0: गोलाबारी वेझो हथियारबंदन की फायरिंग में एक जनो कतल टी पठो भरसा गोठ अलीमया 10 वासी अब्दुल सत्तार उर्फ सफदर 10 मोटरसाइकिल ते वनी रहो त हथियारबंदन केस कतल कर छियो मुरी शाख भरसा मास्को में हथियारबंदन था नौजवान कतल पुलिस मुजिब मक्तूल की सुनाणप अब्दुल जब्बार सोलंकी के नाले से थी है। कश्मीर भरसा कारा इल्जाम हेठे चाचे हथा भाइटी कतल गोठ बख्शो खान धुमकी में जवाबदार अली जान भाइटी मुसमा तहमीना के गोली हणी कतल कर छो वारसन जो चवण है न्याणी के जवाबदार अली जान बेगुनाह कतल कर है जवाबदार के गिरफ्तार कर वे सिंध के मुख्तलिफ शहर में नींगर समेत 5 जणा वेंझे से बुडी वया एक लाश हथ बेन की गोला जारी न्यू सैदाबाद वेझो नौजवान रहीम कोरी रोहड़ी केनाल में बुडी वो संदस गोला जारी सखर भरसा नारा केनाल में बुडी वेल निंगर मजीद मीरानी की बेडी भी गोला गंबर वेझो निंगर लालबख्श भट्टी वाह में बुडी वो संदस गोला जारी लालकाण में गुजरी राज केनाल में बुडी वेल नौजवान मुजम्मर शेख जो लाश हथ हैदराबाद भरसा खिसाना वाह में बुडी वेल निंगर के बेहोशी वाली हालत में कटे वो मटियारी भरसा मजीदाना बिरादरी की बिंदुन में छेड़ो 6 जणा जख्मी मुतासिर धुर जो जवाबदार की गिरफ्तारी के लिए कौमी शाहराह से धरणो जवाबदार गिरफ्तार करने जो मुतालबो
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज
3: जीए FM नेटवर्क
4: सिंध की आवाज
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज
3: जीए FM नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।
5: ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं 7 में लाल शहबाज कलंदर के दरगाह के अहाते में धमाका हुआ है।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

खूबसूरत जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: इस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल,
2: खत्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: दमा दम मस्त, दमा दम मस्त।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: या मोहम्मद।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज कीजिए हैदराबाद में।
1: जिस धरती से जुड़ा कर लाल शहबाज
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद FM 91.0 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GAFM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अच्छा जो आवाज ये हैदराबाद FM 91 उधर दर
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शाह
2: की बनी है
1: FM नेटवर्क।